इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत का मतलब आप लोगों ने पूरा ख्याल रखना है। और जनाब आप लोग तो हमारे इस प्रोग्राम की जान हैं, अगर सुनने वाले ना हो तो आवाजें भी अधूरी लगती हैं, और आप लोगों के पैगाम, आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों की राय, और आप लोग जो है ना बुजुर्गों की दुआओं के बगैर आप लोगों ने नहीं निकलना, ठीक है ना। घर से निकलने वाला हर शख्स जो है ना किसी न किसी की दुआ और इंतजार का मरकज होता है जी, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत का मतलब आप लोगों ने पूरा ख्याल रखना है। और जनाब आप लोग तो हमारे इस प्रोग्राम की जान हैं, अगर सुनने वाले ना हो तो आवाजें भी अधूरी लगती हैं, और आप लोगों के पैगाम, आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों की राय, और आप लोगों की मोहब्बत ही जो है ना

अच्छा जी, एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक के बाद वापस आते हैं। जाई कीमत मेरे साथ साथ रहेगा और बातें बातों का सिलसिला जारी सारी रहेगा। और बातें ये कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, और हिस्सा क्या होंगी बल्कि बातों के बगैर तो जो है ना कोई भी वो क्या कहते होते हैं कोई के, तो खैर जो है ना मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोग्राम के हवाले से मैं अगर बात करूँ, रेडियो के हवाले से अगर बात करूँ, तो रेडियो अधूरा है। रेडियो पर वोकल्स, म्यूजिक, सॉन्ग्स एंड कंटेंट जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यार रात को मैंने अपना एक प्रोमो तैयार किया था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं मतलब यहाँ स्टूडियो आया और जल्दी में मैं लेके आना साथ में भूल गया। वर्क एफ क्या हो सकता है जी, 0938-280-495 इस नंबर पे आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये ना कि आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के पैगामात को भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे, ठीक है ना। हाय हाय।

यार ये ट्रैक जो है ना मुझे कुछ थोड़ा सा बोर बोर लग रहा है, और इस तरह करते हैं कोई और ट्रैक आप लोगों के लिए एंटरटेन करते हैं, शामिल करते हैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट भी हो गया, और लेट होने की वजह से ये हुआ ना कि क्यू लिस्ट, प्ले लिस्ट और सॉन्ग लिस्ट जो है ना मैं बना नहीं सका। बरगैफ जो जो सामने आता रहेगा तो उसे हम एंटरटेन करते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे, अपने होने के एहसास दिलवा सकते हैं 0938 280 495 पे। ठीक।

वैसे प्रोग्राम के स्टैंड अप में चलते चलते ये ना कि ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया भाई कि ये वाला ट्रैक मुझे मिल गया है, ताकि सिलसिला जो है ना आगे और भी खूबसूरत हो पाए। अब मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, सिलसिला जो है ना खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, मैं अरमान के हवाले से बात कर रहा था जनाब। इंसान सिर्फ जो है ना सांसों के सहारे नहीं जीता, इंसान अरमानों के सहारे भी जीता है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, कुछ उम्मीदें ऐसी होती हैं, और कुछ अरमान ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपने दिल के सबसे महफूज कोने में रखता है। वो अरमान जिनके सहारे वो आने वाले दिनों का इंतजार करते हैं, वो अरमान मुश्किल वक्त भी गुजार देते हैं। मगर जनाब जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा इंसान सोचता है। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी रास्ते बदल जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है लिसनर्स कि इंसान के अरमान एक एक करके जो है ना खामोशी से टूटने लगते हैं।

0: अच्छा जी, कभी किसी से मोहब्बत का अरमान होता है, कभी इज्जत पाने का अरमान, कभी कामयाबी का, कभी किसी अपने के साथ खूबसूरत लम्हे गुजारने का अरमान, और कभी सिर्फ ये अरमान होता है कि कोई इंसान हमें समझे, हमारी बात सुने, हमारे एहसास को महसूस करे। लेकिन जब ये अरमान पूरे नहीं होते ना, तो दिल में एक खामोश उदासी घर कर लेती है। इंसान हंसता भी है, बातें भी करता है, लोगों के दरमियान भी रहता है, मगर दिल के अंदर जो है ना, कहीं एक खाली जगह ये बागी रहती है।
1: आहा।

और ये भी एक अजीब किस्म की बात है ना कि बंदा जो है ना, बंदा कहीं जो है ना किसी पहाड़ की चोटी पे और कहीं किसी ऐसी जगह पे चल जाता है जहाँ पे जो है ना सिर्फ तन्हाई होती है, वो इंसान होते हैं और उसकी यादें होती हैं।

हाय मुझे एक बेवफा से प्यार है लगता नहीं दिल। मैं लिसनर्स यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि मुझे एक बेवफा से प्यार है लगता नहीं दिल, सफर दुश्वार है लगता नहीं दिल। जनाब मोहब्बत भी अजीब चीज है, दिल जब किसी को अपना मान लेता है तो फिर दलील नहीं मानता, हिसाब नहीं मानता, मंतक नहीं मानता, वो सिर्फ जो है ना धड़कता है, सिर्फ इंतजार करता है, सिर्फ उम्मीद रखता है। कभी कभी इंसान जानता भी होता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वहाँ वफा कम और तकलीफ ज्यादा है। वो जानता है कि सामने वाला जो है ना शायद उसकी कदर नहीं करता, उसके जज्बात को नहीं समझता, उसकी खामोशियों को नहीं पढ़ता, फिर भी दिल उसी दरवाजे पर दस्तक देता रहता है ना। जनाब बेवफा लोगों से मोहब्बत करने वाले मैं इस बात पे क्या बात करूं, चलिए मैं इस बात पे यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि बेवफा लोगों से मोहब्बत करने वाले अक्सर जो है ना हार भी मतलब अक्सर हार भी जीतने की उम्मीद से मतलब रखते हैं ना। वो टूट भी जाए तो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो जख्मी होकर भी दुआ देते हैं और यही उनका जुर्म भी होता है और यही उनका हुस्न भी होता है। और यहाँ एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान खुद से पूछता है कि आखिर मैंने उस शख्स में ऐसा क्या देखा था, क्यों उसकी एक मुस्कुराहट मेरी खुशी बन गई थी, क्यों उसकी एक खामोशी मेरी रातों की नींद ले गई थी। और जब दिल पर मोहब्बत का रोग लग जाए ना फिर सफर जो है ना वाकई दुश्वार हो जाता है। रास्ते वही होते हैं, शहर वही होते हैं, लोग वही होते हैं, मगर इंसान पहले जैसा नहीं रहता। किसी गली से गुजरते हुए याद आ जाती है, किसी गाने में जो है ना उसका जिक्र मिल जाता है, किसी खुशबू में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है और फिर दिल यही कहता है कि मुझे एक बेवफा से प्यार है लगता नहीं दिल।

तो बाज मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं, और बाज लोग किस्मत में नहीं होते, सिर्फ यादों में होते हैं, और बाज नाम ऐसे होते हैं जो जबान पर कम और दिल में ज्यादा रहते हैं। सफर दुश्वार है लगता नहीं दिल, क्योंकि दिल अभी तक जो है ना उसी मोड़ पर खड़ा है, उसी रास्ते पर खड़ा है जहाँ कभी उम्मीद ने वादा किया था, जहाँ कभी ख्वाबों ने घर बनाया था, जहाँ कभी किसी की बातों ने जिंदगी को खूबसूरत बनाया था। और सच तो मतलब ये है ना लिसनर्स के, कभी कभी इंसान उस शख्स को नहीं जाता बल्कि उसके एहसास को चाहता है जो उस शख्स के साथ जुड़ा होता है ना, वो वक्त, वो लम्हे, वो बातें, वो इंतजार, वो अपनाइयत। मगर जिंदगी का असूल ये भी है कि जो लोग दिल में रह जाते हैं वो हमेशा साथ नहीं रहते हैं, और जो साथ रहते हैं उनकी कदर अक्सर देर से समझ आती है। इसलिए अगर आज भी किसी बेवफा की याद दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मोहब्बत का अंजाम चाहे कुछ भी हो, मोहब्बत खुद भी मतलब जो है ना ये कि देखा जाए तो मोहब्बत खुद कभी जो है ना बेवफा नहीं होते हैं। सफर दुश्वार है लगता नहीं दिल, आप लोगों का दिल भी नहीं लग रहा अगर तो आइएगा हमारी इस महफिल का हिस्सा बनिएगा, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा कुछ पैगामात हैं, इन्हें मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ कि कौन कौन हमारा साथ दे रहे हैं और कहाँ कहाँ से हमारा साथ दिया जा रहा है।

0: सराइकी कौन सा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी? सराइकी कोई गाना शाना आंदे, कोई गाना शाना आंदे कि नहीं आंदे?
1: थोड़ा सुना नहीं
0: आप अपना बड़ास निकाले ना जी, अपना बताए आप।
1: अरमान तो इस एक ऐसा लफ्ज है ना जो इंसान का जो बात पूरा नहीं हो जाता है वो अधूरा रह जाता है, वही अरमान कहलाता है।
0: तो आपके दिल में मतलब जो है ना कोई अरमान है, कोई इस तरह की बात है?
1: बस अरमान वो लफ्ज है जो कि आपको एक चीज न मिले और उसके पीछे मर जाए तो लोग
0: जी। और बहुत
1: नाम तो मेरा जानते हो ना?
0: नाम जानता हूँ, नाम तो तुम्हारा जो है ना मैंने दिल में लिखा हुआ है
1: मेरा नाम।
0: बस छोड़ हाफिज हाफिज। ये चाचू हमारे साथ दे रहे थे जी, मानीरी सवाबी से इन्होंने हमारे साथ दिया और ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। सोच रहा था कि यहाँ पे सराइकी को या अदर लैंग्वेजेस को जो है ना यहाँ पे सराइकी को भी पसंद किया जाता है और सराइकी जुबान भी मतलब जो है ना उसके साथ भी लोगों की मोहब्बतें हैं। और कौन कौन मतलब को पसंद करता है जरा मैसेजेस करके अपने अपने आप बताएं मुझे कि आप पसंद करते हैं। सो ये वाला एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसके साथ में अपनी आवाज को भी शामिल करूंगा, अपनी आवाज को भी मिक्स करूंगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक सराइकी फोक ट्रैक है, आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे और आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा। ये नजरों के हवाले से है, मतलब आंखों के हवाले से बात हो रही है यहाँ पे सरगु हवाले से रजकमदन खबर की गई दी ट्रैक पे पागी सोयो पोएट्री के नो जमा यकीन दे चिता सुबह एंजॉय करवाइया लाला मजा ना आया तो पैसे वापस हो सुन। हाँ पैसे वापस कितने हो सुन, पैसे तुसा दिते नहीं कि जेड़े वापस हो सुनो।

0: टाइम पर गर्ल फ्रॉम सवा भी दैट टाइम मुक्त मैसेज आ रही सिंपल गर्ल या सिंपल गर्ल संगे तासो खई डेरे मेहरबानी सना द बालुली दैट टाइम जमुंग प्रोग्राम हो रही सलाम नकी वालेकुम सलाम जिया खान द पेशावर सलाम ना वालेकुम सलाम मोसिया यानी पेशू गई दैट टाइम जमुंग प्रोग्राम हो रही सलाम नकी वालेकुम सलाम खगु दस्तासो टूलू लगना ठी रचात मनना और आसी दस्तासो द टूल मिसिज न बन इंशाल्लाह शामिल हो रासी द प्रोग्राम ज यो बलेफ कलर गुरम चिमास रसूख ती द कम जना अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तान मुबारक शरूरा अल्लाह दे खुशाला कडीरा मेहरबानी शेर जमीना अल्लाह दे कदरमंद का शेर जमीना संग द बेलडोना प्रोडक्ट्स तासु द सुमरा टेम न तो कोर तवड़े पखेर सर द सुमरा टेम न तासु बेलडोना इस्तेमाल होई शुरुआत मुंगू को नुदागा टेम नासे बेलडोना सरई ब्याज मुंग दर मोहम्मद अस्पताल दस्वाबे प्राणस्तो माशाल्लाह पाघी की तास मुंग सरवे उदागा सिलसिला माशाल्लाह रवान दो इंशाल्लाह उम्मीद आदि चवानी और तासु दगा मल करत्या और तासु जमुंग दगा रोड वाली वह इंशाल्लाह जमुंग सर कायम और दाई मई सही देखा ना
1: इंशाल्लाह ताला के ना जमा दे फिर उसका बंदा करवादरा तरफुरा पूरी तरफुरा पर जिन रही तरफुरा पूरे जबर डाकर से करा
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीर मेहरबानी से जमीन डीर खुशहाल सुम संग तासु माशाल्लाह द डीर टीम न मुंगा सरए तासु दगा द डॉक्टर से सरए तासु तासु दगा प्रोग्राम न और दगा से मुंग दगा कामयाबू तासु डीर खुशहाली गई तासु जमुंग दगा प्रोग्राम न तराजी संग और रस्त रोज माशाल्लाह डॉक्टर हिदर अली मोहम्मद प कामयाब रवान दे रस्त रोज बेलडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान चिकम दी मखपोड़ान दे रवान दी रस्त रोज जमुंग प दगा अस्पताल न बांधे रस जाती गी दगा बीमार खुशहाली खुशहाली डेर मेहरबानी शेर जमीन अल्लाह दे खुशहाल का प्रोग्राम ते दिखा लो डेर खुशहाल शुमा डेर मजे वकड़ा जी खैर खबर खबर माँ बार बार पता प्रोग्राम की कड़ी दो माँ दर तस्वीर गुरा उस इंसान लगा लाट वही चीज दादा कम खुदा पाकर सी नहीं आगा अल्लाह तला का इंसान बयान न कामयाब है उस मतलब यो कस्ब वही चेहरा उसने का माता तसी हुई थी दासी खलक माउली दिल चेगा दा वही चीज जब मोटरसाइकिल बाने गर्ज मा और जान लग क्रीम जोड़ो मा और दा क्रीम बजब या पदग पुख्तनो रूनो खोएं दो खरसो मा दुई लब दो का और कोमा गलत चीज बोल और कोमा दो नंबर चीज बोल और कोमा दुई नब दा पैसे रा गटम और ब्या बजान लजा गाड़े अखलम ब्या बजे दा कोमा नुमा दर तसी हुई दी खल को सोच दा

0: पिज़्ज़ा और द हैदर ममन होम्योपैथिक अस्पताल टूल टिमता दूल समकलीजा डेरा डेरा मुबारक शाह
1: अस्सलाम वालेकुम ग्रानो और इदुन को जे मखुशी सवाबे या हुसैन हैदर ममन अस्पताल दूल समकलीजा त बेलडो ना कॉस्मेटिक पुमकलीजा जमा द तरफ न दे डॉक्टर से ता डेरा मुबारक
2: अस्सलाम वालेकुम ज आफताब प्रेतियम द बेलडो ना कॉस्मेटिक्स ओमकलीजा और द डॉक्टर हैदर अली ममन हॉस्पिटल दुले समकलीजा डॉक्टर हैदर अली मुमंता और टूल द रिड्यू लिसनर ता मुबारकबाद आया
3: पदे गुरनो की सड़े लेवनी की पदे गुरनो की सड़े लेवनी की पदे गुरनो की सबल शांति खाइस्ते